0: और इस सुहाने सफर में मैं रहूंगा आपके साथ विद योर ओन शो मुसाफिर हूँ यारो, अ प्रोग्राम फॉर ऑल दोज लवली पीपल हु आर अवे फ्रॉम देयर होम्स। लेट्स टॉक अबाउट यू एंड योर फेवरेट म्यूजिक विद योर होस्ट जिमी, एवरी वेंसडे 7 PM ऑन फ्री FM 89.0।
1: In the spirit of championing free speech, the following program is conceived and presented by the host as independent content. It does not necessarily represent views endorsed by Free FM.